सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना।

0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा। कह लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवे तू कहना फलाना बंदा देंदा है, अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनु इत्थे रोजी पिया देंदा है। कह लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर, कछु कुम्मी पानी विच आंडे ओदे रेते ते पए ने, पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना ओना दे दुध दा प्रबंध, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पा खान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही। कहिंदे ने पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे, कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिज़क पहुंचा सकीए, देख तनिया जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिज़क देंदा है तू बंदे दी आस ना करी, देण वाला केवल एक ओही आ। साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही, एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही। ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो, ए सारी सृष्टि दी पालना कोई होर पिया करदा है, मैं ता गुरमुखां तो बचन सुन के आई हां। ओ ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार, ओदा टिकाणा हर इक लोक दे विच जो किछ पाया सो इक आवार। कहन लगी मैं ता बचन सुने ने महापुरुषां तो कि रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं केवल एक वाहेगुरु है।
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई।
0: कह लगी देखो भेनो आ तुसी गरीब वल तको भावे मजदूरी करदा है, आखर ओ कखां दी कुली विच रोटी पका के खांदा साडा बापू ते नहीं देंदा, जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है। कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है कीड़ी तो लै के हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है।
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां।
0: कह लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहेगुरु जी दा मुकाबला कर सके, इन्हें जीवां नू कोई पाल सकदा है किसे अंदर ताकत नहीं। शायद ए ही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदों विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान ओ तेरा घर की हो जाए जिस घर विच तू बैठा, उस घर दे दरवाजे की हो जाने जिस दरवाजे विचों तू लंघने। ते पुछया महाराज हैरानी क्यों, कहिंदे ने हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने, मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जाए जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देने। असी पढ़ने सो दर तेरा कहा की हो जाए तेरा दरवाजा, सो घर कहा की हो जाए तेरा घर, जित बह सब संभाले जिथे बह के तू सारिया की संभाल करने। साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है, कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके।
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहें।
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणां ने ओ गुस्से विच आ गईयां, कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं, असीं नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला, सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है, सानू तां साडा बाप ही खान नू देंदा है, सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है।
1: नहि देखियो दे तो कित राम देओ जाए किस के कब धाम।
0: अब कहन लगियां असीं नहीं देखिया कि वाहगुरु कोई है किसे दे घर भी जाके रोजी देंदा होवे, कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के रोटी दे के जावे।
1: अन बस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार।
0: लगी देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है, रब ने कदी कपड़े खुआ के दिते ने, साडा बापू ता अनाज लिआउंदा है कई तरह दे फल लिआउंदा है, तू कहनी राम देण वाला है रब देण वाला है खुदा देण वाला है, असी नहीं देखिया किसे दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे।
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी।
0: किन्ने आपस विच गल करदियां करदियां ओ इन्नी कु दृढ़ अरादे वाली है, कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो कि रिजक देण वाला वाहेगुरु है, जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो। शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की साडा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आख है सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरत भया ऊपर सात सैन, मुख अप्याओ बैठ को देन, इन्ना कुछ लै के भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दातिया ए निर्गुण, ए तेरे गुणा नू नहीं समझदा, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिजक वैगुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले देवरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच कहा और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहिंदी है देखो जिन्निया मर्जी दलीला दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखा तो एक बचन सुनिया के देन वाला वाहगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, ए किस बात अपर बिदतावत।
0: कहिंदे लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं, ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नू घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिया गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकट्ठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर्क करदी है।
1: जो प्रत पारे देत हमेश, लग तं ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देन वाला कोई होर है जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है, ते जिहदी कृपा नाल तन वड्डा हो रिहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बात की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप करदे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो, हम सब कहें कीनस निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़िया ए चार कहिंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहिंदी पई ओ सच कहिंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिन्हू समझ नहीं, एक वाहगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रकृत कूल पे ते फूला।
0: किन्ने अपने आचार गज जमीन ते फुलिया बैठा, राज गद्दी ते फुलिया बैठा, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है, मेनू भी रिजक ओने दिता है, राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी, आक्षे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हें सारिया बच्चियां नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हों दे मन विच है की है, ए आपस में जेड़िया गल्लां करदियां ने इकलियां, आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तिन बूजन लागा, कहो तू किस को भुगते भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा, सावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारिया उची आवाज विच कहन लगिया, पिता जी जेड़े तन ते बस्त्र पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपा हथा विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छकदिया वा ए भी ता तेरा बख्शा होया है।
1: ब्रित भारत नित दे दहारा, हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं, आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है। एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना, साडी प्रतपालना तुसी कर दे हो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती, राज कोयर बोली इस भाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहिंदी सी देन वाला रब्बे, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्त्र कौन दिंदा। ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दूबा, पुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान नाल सुन ले, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे कहिंदे ता रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचों दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया है ते एक जेड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले, सब को भागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देण वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर घाट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ये गल वखरी के भाग हपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा है, ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन। आपां पढ़ने आ कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ए तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सब के सुनते गिरा उचारी।
0: इन्हने इन्नी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी एक परमेश्वर एक वाहगुरु। अपने भाखानी आ, फिर गुस्से विच आया कहिंदा चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नूं कोड दा रोग लगा होया, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारिओ सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नूं रब तो दूर लै जांदी। साहिब ने मनमुख दी परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जाणीए। साहिब ने बाणी विच कहा दात प्यारी, विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचों निकलन लगा प्रकरण मिलदा, रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल सवेरे, सोने दिया मोहरां रखनिया, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आने ना, ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने। लोकां लंघी जाना, इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਕੀਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਨੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਹੇ ਨਵਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਤ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।
1: ਹਾਥ ਪਾਵ ਅੰਗਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਅਸਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਪਣ ਭਾਗ ਤਬ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਏ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੂੰ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਂਗੀ।
1: ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਈ ਸੀ ਸਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ।
0: ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
1: ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਸੁਬਰ ਜਿਤ ਰਹੀ ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੀ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੋਕ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

होते हैं। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ए बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नू रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उसनू नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नू अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नू रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पहरन नू बस्त्र देंदा है, खान नू भोजन देंदा है, तन ते पान वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते ए खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इनू पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इको उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ए केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा लै सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दित्ता खानी आ, उहदे दित्ते हुए वस्त्र पानी आ, उस निरंकार दे दित्ते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईआं ते चारा ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रही आ बापू तेरा दित्ता खानियां वा, पर ओ कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक होके कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जड़ा पत्थर दे कीड़ियां नूं रिजक देंदा है, जड़ा पानी विच पैदा होए जीवां नूं रिजक देंदा है, जड़ा धरती ते पैदा कोई बनास्पति नूं रिजक देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पै ए भी उस करतार दी दित्ती दात है। एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला, कोई किसे नू देण वाला नहीं। अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी, कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है, जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है, ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है, मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा, फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागां विच जे होवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर लिया। इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नूं आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नूं गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता, पर जदों इतिहास नूं पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नूं बयान कीता, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी, उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तों पहलां मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

खंजर बन जाना, छोटी जी गुरज बन जानी। कहण तो मुराद एक शस्त्र विचों कला दबान नाल बटन दबान नाल पांच शस्त्र देड़े सानू निकल आउंदे सन। फिर इन्हें कीमती एक चंदन की चौंकी भेट की। साहब के चरणों विच दातां दे के रतन राय वापस चला गया। ते जिस रियासत विच आनंदपुर साहब वसिया उस रियासत का नाम सी कहलूर। ते कहलूर का उस वक्त राजा सी भीम चंद। कहिंदे एक वारी ये साहब के दरबार विच आया जो पंघाणी के युद्ध का मुढ़ बजद। सतगुरु के घर विच आया, इस प्रसादी हाथी नूं तकिया, चंदन की चौंकी तकी, पांच कला शस्त्र तकिया। ते गुरु के दरबार की महिमा देख के अंदर जेड़ा इको दम ईरखा विच भड़क उठिया। एक फकीर बंदा पहाड़ी ते रहिंदा, इहदे कोल इन्नियां कीमती वस्तुआं, इह दाता इह चीजां तां मेरे वर्गे राजे दे घर विच होणियां चाहीदियां। मन एक फुरना बना लिया, मना जिवें किवें होवे गुरु गोबिंद सिंह तो छल करके धक्का करके जोर करके ये चीजा मैं खोह के अपने घर लिया। वापस तां गया चला, पर कुछ दिनों तो बाद भीम चंद दे पुत्र दा नाम सी अजमेर चंद। इहदा रिश्ता कहिंदे ने एक श्रीनगर रियासत है, उस वक्त रियासत सी, खेमकुंड साहब नूं जाओ अजे भी ये पौंटा साहब तो अगे शहर आउंदा श्रीनगर। इस रियासत दा राजा सी फतेह शाह। फतेह शाह की लड़की का रिश्ता राजे भीम चंद के लड़के अजमेर चंद नाल होया। ते जदों बच्चे का सगन होना सी, इन्हें एक चाल चली के मना गुरु गोबिंद सिंह के दर तो मिठी जी चाल चल के ते सारियां चीजा मैं अपने घर विच लै आवां, एक वारी लै आवां, ते इस फकीर दी की ताकत मेरे तो चीजा दोबारा खो सके। सिख तवारी कहिंदी है इस भीम चंद ने अपना मंत्री वजीर भेजिया कि यह सारिया चीजा प्रसादी हाथी काबल की संगत की भेजा होया कीमती तंबू ते चाननी कनातां ये चंदन की चौंकी मेरे घर विच रिश्तेदार आने ने एक वारी दे दिओ ते जदों बच्चे का सगन लग गया मैं ये वापस कर दियांगा। आके वजीर ने फरियाद की ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सुन के एक गल कही सी, कहन लगे ओ मंत्री जे किते भावना शरदा नाल आउंदो ते शायद ये दाता ये चीजा तुहानू दे देंदे, पर तेरे राजे दा मन खोटा है, एक वारी चीज गई ओ कहिंदा वापस नहीं आउणी, ते नाले जिहड़ी गुरु के दरबार की चीज है ना सच जानी ये बादशाहां दे दरबार की शोभा नहीं बन सकती। ये पातशाह दा दरबार है बादशाह दा नहीं। एक मैं अर्ज करा, आ हैदराबाद दे निजाम ने नवाब ने एक खिन विचों निकल लगा एक कीमती चांदनी भेट की सी जिदी उस वक्त कीमत 1,45,000 दे करीब सी। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब ने रामबाग विच ए चाननी अपने सिर ते लाई ते जदों कीमती चाननी तकी थल्यों उठ के कहिंदा मेरे सिर ते नहीं, ए चाननी गुरु के दरबार विच चंगी लगदी। उतरवा के लै गया ते जदों दरबार साहिब भेट कर लगा अगो पुजारियां ने जवाब दिता सी जेड़ी चाननी एक वारी बादशाह दे सिर ते लग जाए ओ गुरु दरबार ते नहीं, ए पातशाहां दे पातशाह दा घर ए। ते फिर कहिंदे ने तरले लै के कहिंदा सी इहनूं प्रवान तां कर लो। हैरानगी दी गल, दो पिंड तनखाह वजो लाए गए सन शेरे पंजाब नूं केवल इस करके कि जेड़ी चीज गुरु दर ते भेट करनी पहलां अपने सिर ते तूं क्यों लाई। आ दो पिंड अजे तीकरां ओ दरबार साहिब दे नां उहनां दा मामला उहनां दा जिहड़ा लगान इह आउंदा रिहा। परत के इह चांदनी खजाने उत्ते लांदे रहे, उहनां ने गुरु साहिब दे प्रकाश करन लग्गिया नहीं। एक वारी प्रिंस ऑफ वेल्स जदों अमृतसर गए ते उत्थे कुछ झोली चुका ने ये चाननी ओदे सिर ते ला दिती। पुजारियां ने उस दिन तो बाद ओ चाननी लपेट के केवल एक शीशे दे बक्से विच रखी जेड़ी 84 दे कांड वेले अगन भेट हो गई। केवल ओदी सवा दियां भरियां होईयां बोरियां कोल रह गईयां, ओ चाननी दा नामो निशान मिट गया। कहण तो मुराद कि जेड़ी चीज गुरु दरबार दी शोभा है ओ अपने घर दी नहीं, क्योंकि सिख दी ते भावना ही है वे कि मेरा घर बने ना बने पर सब तो पहला मेरे गुरु दा घर बनना चाहिए। मेरे घर भावे एक वक्त दी रोटी पके ना पके मेरे बाबे दे दर ते 24 घंटे अठे पैर लंगर चलना चाहिए। मेनू तन ढक्कन नू कीमती कपड़े मिल ना मिल पर जेड़ा बाबे नानक दे दर ते आ जाए वो तन तो

नानक होशी थी सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

हरिचंद मारे सो जोधा लितारे सात करोड़ रायल वाये काल कायल सबे त्रण त्याग पागे सबे त्रांत पागे फिर सहज कितने पही जीत मेरी कृपा काल के। हे मेरे वाहेगुरु।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: सेवा किससे होगा और न दूजा करता पग तेरा सोई तू पावे जिसने तू रंग करता। तो साहब संगे जी गुरु महाराज साहब के दरबार चो ये धूड़ ला के मथे अपने जन्मों जन्मों बुरे लेख मेटने वास्ते आए हैं। सतगुरु कृपा कर बहुत फेर पे कृपुर को आपकी कृपा की जाए जो दयाल दर्शन भी अपना ऐसी बख्श करी जाए। महाराज साहब बख्शी पर दयालता करके आज पवित्र दर्शन सब संगता नु बख्शन गरीब ने आज के दर्शन का सदका हिसाब संगत जी संसार विच जीवन है। महाराज के दर्शन तो बगैर कोई जीवन नहीं दुनिया के अंदर सब तरफ रही स्थिति है। बेनती है महाराज अगे जगत के लंबा रख लै अपनी कृपा पार जिस द्वारा उभरा चुका लै और सतगुरु सुख दिखा दिया सच्चा सौज विचार नान कबर नी हर गुण बख्शन हार परमेश्वर तो बिना होर कोई बख्शन होया नहीं। तो सतगुरु कहंगी घर महाराज ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਝਾੜੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
1: ਜੀਓ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੀ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ तुम आपन बिरध रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले